0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498।

0: जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवे चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 6:05 దాటి 24 సెకండ్లైంది. అర్చన క్షేత్రదర్శినిలో భాగంగా ఇవాళ తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లా తిరుక్కడయూరులో ఉన్న ప్రసిద్ధ శివాలయం అమృత ఘట్కేశ్వరర్ అభిరామి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. శివుడు కాలాంతకుడిగా పార్వతీదేవి అభిరామిగా కొలువై మార్కండేయుడి కోసం శివుడు యమునిని సంహరించి ఆయువును ప్రసాదించిన అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచిన క్షేత్రం అమృత ఘట్కేశ్వరర్ అభిరామి ఆలయం. తమిళనాడులోని ఈ ఆలయం దర్శించుకుంటే ఆయువు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి అని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. నాగపట్నం జిల్లాలోని తిరుక్కడయూరు పట్టణం మొదలురేకి 22 కిలోమీటర్ల దూరం, పొరియార్ నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఆలయం. ఈ కొవెలలో పరమేశ్వరుడు అమృత ఘట్కేశ్వరుడు అనే పేరుతో పూజలందుకుంటున్నాడు. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఈ ఆలయం గురించి మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. ఇది అర్చన సమయం.

0: करता है। न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: బిజినెస్ కి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు, మెళకువలు, సూచనలతో రూపొందించిన కార్యక్రమం బిజినెస్ ముచ్చట్లు ప్రతి బుధవారం ఉదయం 9:15 మీ వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 లో తప్పక ట్యూన్ చేసుకోండి. వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 ప్రతి

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो

0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
2: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो

0: सीएनजी बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
1: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जल मार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी।

0: नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी, पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लोम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सकता है? न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: 10:45 దాటి 33 సెకండ్లు. ఇప్పుడు వినిద్దాం అతిథి దేవోభవ చిత్రం కోసం సెట్ శ్రీరామ్, నూతన మోహన్ పాడిన పాట, భాస్కర్ భట్ల రచన, శేఖర్ చంద్ర సంగీతం.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में

भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और मंजरी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नेहा तुमको और सुनने वाले सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा एक धुन बज रही थी थोड़ी देर पहले कि दोनों किसी को नजर नहीं आए।
1: हाँ
2: है ना, और चल सखी सहेली में धूम मचाए।
1: नजर तो हम नहीं आएंगे लेकिन अपनी बातों के जरिए हम सभी श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
2: बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखो हम सबसे पहले तो विषय ही बता देते हैं कि भाई शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग
1: क्योंकि बहुत जरूरी विषय है।
2: बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भर भर के संदेश भेजे हैं तो पढ़ने में मजा भी आएगा नेहा। और व्यंजन में फलों के जायके इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: और साड़ियों का संसार, क्योंकि अब शादी के सीजन में जाएंगे तो साड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो आज बात होगी चिकन की साड़ियों की। और शब्द हमारे विचार आपके में हमने आज कौन सा शब्द दिया है?
2: सामंजस्य। जैसे कि हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो प्रोग्राम में भी सामंजस्य बिठाते हैं।
1: हा?
2: तो हमारे सभी श्रोता भाई लोग अपने इस बातें लिखे हमें संदेश में और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचते हैं कि हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: और जाते ही हम लोग की नजर ऐसे ही पड़ जाती है कि क्या क्या चीज अच्छी है। और अगर कुल्फी दिख जाए इन दिनों तो बहुत मजा आता है। कुल्फी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है, लोग खाना भूल जाते हैं, पहले वो सब खाने लग जाते हैं। लेकिन जो शादियों के सीजन में क्या होता है नेहा, अक्सर हमने देखा है कि खाने की बहुत बर्बादी होती है। लोग प्लेटों में सब चीजें एक साथ ही परसने लग जाते हैं, एक चमचा इसका, एक चमचा उसका, एक चमचा कढ़ी का, एक चमचा दाल का, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर उसमें जब खाया नहीं, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो वो चीजें बचती जाती, फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह फिकती बहुत है कहना चाहिए।
1: हाँ, और बहुत सारी ले लेते हैं ऐसे, चलिए ठीक है सारी चीजें अगर अपने को चखने का मन भी है तो थोड़े थोड़े ले सकते हैं चखने के हिसाब से, फिर लगता है कि इतनी लाइन लग जाएगी, फिर हम कब आएंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कि अगर अच्छी लगी तो हमें एक कटोरी खानी है तो वो पूरी एक कटोरी भर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी तो एक कटोरी वेस्ट भी तो जाएगा।
0: हाँ, लेकिन वो भरते बहुत है। और इसी तरह कई तरह के सूप के स्टाइल भी दिख जाते हैं, तो टमाटर का सूप ले लिया और ये अपना दूसरा सॉस वाला सूप ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे सूप होते हैं, कॉर्न सूप ले लिया, तो इतनी सारी चीजें हो जाती है कि आप एक के ऊपर एक परत लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप जब अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देते हैं।
1: हाँ, और आप अपने शरीर के अंदर भी क्या क्या छोड़ रहे हो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि खाना भी आमतौर पर शादियां शाम को होती हैं, रात में खाना मिलता है उसमें, तो रात में जब आप ये खाते हैं, तेली भोजन खाते हैं, सूप या ग्रिल्ड पनीर जैसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते हो कि कुछ दूसरी चीजें ले लेते हैं आप खाने के लिए, जो एकदम पूड़ी वगैरह ले ली आपने, बहुत सारी मिठाइयां खा ली, और तो ये रात में आपको परेशान भी कर सकती हैं।
0: लेकिन अब शादी में गए तो कोई सोचता भी नहीं इस तरह से, बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीजों पर ध्यान देते हैं। और कई बार नेहा देखा है कि बहुत सारे सलाद के स्टाल लगे होते हैं तरह तरह के, तो लोग उसको भी लेने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इतना आपको आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो वो सब चीजें आप ऐसे ही प्लेट रखते जाते हैं। कई बार तो होता है प्लेट में सलाद पर सा नहीं पसंद आया, वो प्लेट ऐसी आपने उसमें डस्टबिन जो रखा रहता है उसमें डाल दिया, फिर आपने दूसरी प्लेट ले ली, तो आजकल प्लेटों का भी एक सीमित रहता है कि भाई क्वांटिटी में आप यूज करें, उसका भी अलग अलग पेमेंट।
1: नहीं, मेजबानों की बात को आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपने भले ही एक सलाद खा के प्लेट नीचे रख दी है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्लेट गिनकर ही पैसे लेते कई बार, तो आपने भले ही कुछ नहीं खाया उसमें लेकिन पैसे उसके देने पड़ रहे हैं। तो एक तो एक ही प्लेट यूज कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कि थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बुफे सिस्टम का वो रहता है, आमतौर पे सब अपना खाना खुद लेकर खाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक बार अपनी प्लेट सजा ली है तो हमने तो अब तक जितना जाना है, तो वही एक सिस्टम है कि अगर आपने अपनी प्लेट सजा ली और आपने खाना शुरू कर दिया है तो आप लाइन के बीच में भी जाकर अपना खाना ले सकते हैं, आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा अगर ले लेते हैं तो वो खत्म होने के बाद आप फिर से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं उसी समय
0: ले सकते हैं,
1: और गर्म भी मिलेगा।
0: बिल्कुल गर्म भी मिलेगा। और जो शादियों में बच्चे खाने का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से आप किसी को जिसको आप बांट सकते हैं, जिनको जरूरत है, भूखे हैं, मंदिर के आसपास आपको लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको वो खाना अच्छे से पैक करके जो खाना बच रहा है आप उनको पहुंचा दें तुरंत ही, तो उससे भी एक होता है कि हमने किसी के भूखे का पेट भर दिया है। तो खाने को आप इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए कहना चाहिए। और बच्चे खाने को दूसरों के साझा के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी होता है कि हम इसको बनाए रखें, इस चीज को जो हम साझा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छा भी लगता है कि हम लेके गए और दूसरे की आत्मा को संतुष्टि मिलती है उस भोजन को करने से, और बांट कर खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहाँ पर भी आप इन चीजों को दान कर सकते हैं।
1: जी, कई ऐसे आश्रम हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती है, लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको खुद खाना लेके जाने की भी जरूरत नहीं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ उन्हें फोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके बाद आप उन्हें फोन करके और उन्हें बता दें, तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि कैटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से ही चला जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं, मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए, और प्लेट में उतना ही ले जितना खा सकते हैं। शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और छोड़ देते हैं, और
1: टेस्ट करने जितना ही लीजिए, तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो जी भर के खाइए,
0: वो आप खाइए, और जो हमारा जो मेन्यू सेट करते हैं तो उसको भी सीमित रखना चाहिए। नहीं कि बहुत सारे खाने के आइटम रख दिए और एक जैसे कई सारी दालें रख दी, कई

0: तो हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, सभी मिलजुल कर।
1: बिल्कुल सभी चलेंगे, क्योंकि भाई देखो शादियों का सीजन है।
0: हाँ,
1: तो चलो चलते हैं, हम लोग तैयार तो हो ही गए बढ़िया से। चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे भोजन लगे हुए, बहुत सारे सलाद के आइटम तुम्हें दिख रहे हैं ना, आइसक्रीम दिख रही है, रसगुल्ले दिख रहे हैं ना।
0: हम तो वही सारी चीजें ही देखते हैं पहले। खाने पीने में क्या है, वही चावल दाल सब्जी रोटी। अब देखना है तो कुछ आइसक्रीम देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह, कुछ मिठाइयाँ देखी जाए।
1: बिल्कुल,

0: सारी रोटियां रख दी, तो उनमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो कुछ चीजें हमारी बच जाएंगी वेस्ट होने से।
1: तो ये मेजबानों के लिए है कि वो ऐसा ना हो कि बस हमें सबको सब चीजें खिला देनी है, कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने, ऐसा मत कीजिए। आप 16 भी रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा ही है वैसे तो, लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना उन्हें तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना, उन्हें 16 में भी निकालना है
0: जी। तो इसी तरह हम पानी की भी हमने देखी बॉटल्स होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घूट पिया छोड़ दिया, या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए, तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं
1: जी।
0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीजन में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रही है कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियां विवाह में, तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना चाहिए। कह रही है एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं, जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं जो जूठा ना छोड़े, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही ले। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं,
0: बिल्कुल मिलते हैं, सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा। और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता था, खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के जमीन में बैठ के खाते थे उसमें
1: जो परोसा जाता था
0: वो पूछते थे कि और लेंगे तो इस तरह से खाना थोड़ा बच जाता था।
1: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता, अरे नहीं खाएंगे, खाइए, दो तीन रोटियां दे दी जाती थी जो कि बच जाती थी, पर ठीक है सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं करते थे। और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिए कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट न खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि दो तीन दिन भूखे रहना चाहिए,
0: होता नहीं।
1: हाँ, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई,
0: तो अपने हिसाब से कहा है, लेकिन लोग बड़ा इंतजार करते हैं,
1: भूख के कारण जरूरत से ज्यादा न खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें, प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें, तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें, मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं।
0: अरे बहुत
1: सामंजस्य से नहीं बैठ रहा है मेरा इस कमेंट के साथ, क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं।
0: नहीं, मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आजकल हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर दो तीन तरह की आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको।
1: देखिए मंजरी जी, इतनी सादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी, उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता दिया।
0: फिलहाल
1: हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन, और बहुत सी रॉबिनहुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए, और शादी में डांस करें या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर।
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए, और उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन बस गाना सुनते रहिए।

0: तो इसी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए। और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के भेज रहे हैं मंजरी जी।
1: बिल्कुल, मैंने एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग। शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है। भोजन का सही सदुपयोग करना हमारे

0: सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करें और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुनें, सलाद, सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के बजाय गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचे। नेहा, बहुत सुंदर सी बात लिखी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए, तो खाना भी खा चुके हैं लेकिन अब टेबल घेरे हुए, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
1: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट, लंच सभी सुविधाएं, पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवे। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टॉल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
1: रस्में
0: होती उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए हैं,
1: गिनती करते हैं कि कितने कितने रस्में हैं उनकी सबकी साड़ियाँ।
0: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
1: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद
0: भी हो गई है।
1: शिकायत हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रोकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है, जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मिथेन गैस पैदा करता है।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में ले, खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो भोजन डस्टबिन में जाता है, जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उसे जरूर समझाते कि वो ऐसा ना करे, बल्कि किसी और को भी देखे तो उन्हें भी समझाएं, पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि आपका क्या जा रहा है, पर ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखें। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज्यादा ले लेते थे फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग सुन लें गीत।
1: बिल्कुल।

0: नेहा, तो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर प्यारी सी कढ़ाई के बारे में, जिसे चिकनकारी कहा जाता है। और इसकी सुंदर बहुत सारी साड़ियां जो होती है बहुत सुंदर लगती है और हर कलर की होती हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन मंजरी जी दो बातें देखिए ऐसी आई हैं कमेंट, जिन्हें बिल्कुल भी नकारा नहीं चाहते, मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें जिनसे नजर नहीं हट रही हमारी,
0: तो हम समझ रहे हैं तुम्हारा इशारा, पढ़ लो।
1: हाँ हाँ, क्योंकि वो हमारे काम की बातें आई हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी एक शादी में गए थे, शेक, आइसक्रीम, राजभोग, रसमलाई, पनीर कोफ्ते पर ही हाथ साफ किया, तली भुनी चीजों से दूर रहे, खाली मिठाई ही वो खा रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई भाई बंधु हैं। और एक और ये कहा कि
0: नेहा, हम साथियों को ये तो बता दे कि नेहा इस कमेंट को देख के पढ़ के देख रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह का कमेंट।
1: हाँ, ये बिल्कुल हमारे भाई बंधु है, कहते हैं हमारा कुछ बिछड़े हुए साथी जैसा लग रहे हैं। और एक कहते हैं कि आजकल शादियों में हमें पता नहीं होता कि क्या खाना है, कितना खाना है, जो मिला सब डालते जाते हैं, हमें वही लेना चाहिए जो पसंद हो। हमने देखा कि ठंडे के साथ गर्म दोनों सेवन करने से जो गलत है, इसका स्वास्थ्य पे असर बुरा पड़ सकता है। तो जिन्होंने कहा ना कि उन्होंने सारी मिठाइयों पर हाथ साफ

0: हम तो कह रहे देखिए प्लेट में जितना रखे, जब तक आप अपनी प्लेट पूरी साफ कर रहे हैं तब तक जो खाना खाइए, आपने रिस्क पर खाइए ऐसा कह सकते हैं,
1: छोड़िए कुछ भी जी। तो चलो हम अपने चिकन के विषय पर आ जाते हैं।
0: हाँ, चिकन की साड़ियों पर।
1: चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की। यह लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहाँ लघु उद्योग है जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहाँ के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं। मुरी, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनसे कढ़ाई होती है और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफी प्रसिद्ध है।
0: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएं हैं और ज्यादातर महिलाएं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं। और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा। पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है। और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो है थोड़े असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है क्योंकि एक जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है।
1: बिल्कुल। और नेहा, कई बार हमने खुद भी देखा है वहां पर कि घर घर में कढ़ाइयां होती, महिलाएं, बच्ची, लड़कियां बैठी सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है कि जब उनके पास घर के काम के बाद समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती हैं। और जहां तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है। और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टांकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा।
0: बिल्कुल। और बात करें अगर चिकन शब्द की तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना। जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला, संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं। और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आंखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध। सुई धागों से जन्मे टांकों और जालियों का एक विस्तृत, जटिल किंतु मोहक संसार है। तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है, उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते हैं।
1: और लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां तो होते ही हैं, जैसे मुरी, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला जाली, मुंद्रा जाली, जाजी, सिधौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि बहुत सारी हैं। सबसे मुश्किल और कीमती टांका है नुकीली मुरी। कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टांके लगाए जाते हैं, जिसे जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है। इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी करने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
0: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं। तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से उसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है, अलग अलग तरह के मिलते हैं, आजकल मशीनों वाला काम भी मिल रहा है
1: लेकिन उसकी चिकनकारी की अलग पहचान होती है,
0: आप पहचान सकते हैं।
1: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है, जैसे जॉर्जेट, शिफॉन की साड़ियां भी हैं और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी इन सब में और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफा कवर इन सब पर भी ये वर्क मिलता है। तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपका इन सब से सजा हो। कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी चिकन के बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी कढ़ाई है। तो हमारी सखियों में किसी ना किसी को तो ये वर्क आता भी होगा।
0: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है।

0: तो नेहा, थोड़ी देर पहले तुम कुछ गुस्सा हो रही थी।
1: गुस्सा नहीं होते, हम तो कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि खाना अच्छे ज्यादा मत खाओ, कोई कह रहा है कि साड़ियाँ क्यों लेती है हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और गुस्सा होने का एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया नहीं है शादी में हमें, और सब बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने नए कपड़े लिए ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा होना तो बनता है।
0: बिल्कुल बनता है। चलो ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना खा लेना,
1: कुछ तो गुस्सा कम हो,
0: कुछ तो कम होगा तुम्हारा, ठंडक मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी।
1: हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए हम खाएंगे आम की स्मूदी
0: बनाओ,
1: जिसकी रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे और खाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे। तो एक आम पका हुआ लेना है इसके लिए, काट कर, एक कप ठंडा दूध, दो चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा लीजिए।
0: अच्छा, यानी तुम आज अकेले खाना? हाँ। तो ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी तुम अपने

0: लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही।
1: हाँ,
0: इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, एक कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, आधा चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और इसकी विधि है कि दही को अच्छे से फेंटे, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं और नेहा को देख दिखा दिखा के खाएं।
1: हम तो देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो। दो कप दूध, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, तीन चार चम्मच चीनी। और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए। जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाना है, क्योंकि नहीं तो डलियां पड़ जाती हैं। तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए और ठंडा होने पे इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए। स्वाद दुगुना हो जाएगा। हमें दिखा के खाइए या खुद खाइए, हम तो खाने वाले हैं आम की स्मूदी।
0: और फिलहाल सुनने वाले हैं
1: गाना।

0: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
1: ये सामंजस्य बना के बन रहा है। और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है। और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा? कि पहले तो खुद के साथ, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और

0: तो देखो हमारे साथी लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहां सामंजस्य होता है वहां रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज, हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाएं।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ देना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे। तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते हैं।
0: आप अपना ख्याल रखिए और फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है, जनरेशन गैप की समस्या। परंतु घर का मुखिया अगर उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी सभी में सामंजस्य बैठाकर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता है जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों को ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
2: मत बेकरार करना

0: अब तो हम भी कुछ नहीं जानते क्योंकि समय हमें रह नहीं गया है
1: तो अब हमें चलना होगा, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे उनकी रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
2: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं

0: अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
0: जी मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहां बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहां रहना होता था, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का

0: बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में, तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था। हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीजें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ, मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हाँ मैंने बहुत काम किया।
1: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपने सबसे पहले कौन सा काम किया? आप
0: पहले जब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हुई थी तो रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी।
1: अच्छा।
0: वहाँ एक रेडियो प्ले हुआ था, उसका नाम था किरचें, तो वो रेडियो आर्टिस्ट के साथ किया था मैंने। और बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी दो तीन रेडियो सीरीज की थी
1: जी,
0: आउटसाइडर प्रोड्यूसर और वो लोग होते थे और रेडियो पे वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होता था। तो वो मैंने एक निर्मला किया था, जिसमें मैंने निर्मला प्ले किया था, कोई पंजाब बैकग्राउंड पे भी था, वो भी किया था। चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड्स 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफी महत्वपूर्ण था और वो सिर्फ रेडियो के लिए था। वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है।
1: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, कैसे नाटकों की दुनिया में आए, कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
0: जी, वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16-17। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं। उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई छोड़ के
1: जी,
0: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे। तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी इच्छा है तो कर ले। उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या? मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है, पर कर लूंगी अगर करवाना है तो। तो बोले ठीक है, आ जाओ देखो। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में। उन्होंने कहा आ जाओ, उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक नया जीवन
1: मिल गया।
0: तो वो मेरी शुरुआत थी। पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: जी,
0: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे, वो जो उसमें डायरेक्टर थे, और मैं उनको मामा जी कहती थी। आप सोचिए, आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे, और वो मेरे हीरो थे।
1: जी, तो अब तक आपने कितने नाटक कर लिए होंगे
0: स्टेज पे? तो मैंने मेरे ख्याल से 25-30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8-10 साल। उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए।
1: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था हैवदन, उसमें आपने काम किया और जाने माने नाटककार बीबी कारंत साहब के निर्देशन में।
0: जी,
1: एक
0: जी,
1: बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: तो कैसे मिला आपको ये नाटक और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
0: जी, इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव, ये नाटक था हैवदन। क्योंकि मैं भारत भवन में गई रंगमंडल में, तो वहां पे ये नया नाटक ओपन हुआ था, कास्टिंग की जा रही थी। उस कैरेक्टर में कारंत जी को मैं ही सबसे ज्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की। नई लड़की थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारंत जी के लिए भी।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी एक चुनौती था। इससे पहले उन्होंने एनएसडी में ये किया था और कारंत जी को जाना जाता था इस नाटक से ही। और वो कैरेक्टर उसमें जो हैवदन में जो मेन कैरेक्टर है, वो सेंट्रल कैरेक्टर है पद्मिनी का। तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था और उसके लिए जो उनको चाहिए था उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहां से लेके एक एक चीज पे काम

0: किया, और वो जो उन्होंने काम किया वो मेरे जीवन भर की कमाई है समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक अब तक मेरे काम आ रही है
1: जी।
0: जो जो बताया उससे जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहां भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में उसमें, बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
1: तो इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
0: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया, दोनों के दोनों दोनों चले गए, दोनों चले गए, मरने से पहले मुझे तो याद कर लेते, मेरा क्या होगा। माँ माँ माँ दुर्गे दुर्गे, अब तू ही बता मेरा कौन है, कौन है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अब कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया, तो ठीक है, इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूं। इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
1: बिल्कुल,
0: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी भोली लग रही है, लेकिन उसकी चालाकी देखिए,
1: अंदर क्या चल रहा है।
0: हाँ। वो यहाँ देखिए, अब ये दूसरे डायलॉग में आपको दिखाई देगा।
1: बिल्कुल।
0: चलो चलो देवदत्त, कपिल ये क्या है, ओफो हमें क्यों सता रहे हो, जाओ यहां से। देवदत्त मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो अब देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना। सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है, याद रखो, चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग, फिर मिलेंगे कपिल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन लें।
0: जी जरूर, आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
1: अच्छा जी।
0: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं। तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ, उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी, जी।
0: और जिस तरह से वो वेस्टर्न इंडियन सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और सब में ढल जाती हैं, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे यार,
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थे एनएसडीएन आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे. तो उनसे हमने बहुत सीखा. एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको.
0: बिल्कुल.
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल मैंने किया था. जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था. हमारा एक ग्रुप था कुटुम्ब.
0: अच्छा.
1: जिसमें अन्नू कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि केमू वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय.
0: बिल्कुल.
1: उनके साथ में हमने रोशोमन प्ले किया था. आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो. तो रोशोमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका. और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था.
0: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती
1: है. जी जी बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
1: जी,
0: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
1: जी,
0: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
1: जी, जी.
0: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है,
1: मुश्किल
0: संवाद याद रखना. हाँ. बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है. खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं.
1: ये तो साधना है. मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग. ऐसा नहीं है. ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना. लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
0: बहुत मुश्किल,
1: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है. ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है. शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है. आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार. लंबे समय तक आवाज की, मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती है चीजें. उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है.
0: बिल्कुल.
1: और इस सबको कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही. और निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा.
0: बहुत मुश्किल होता है. कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है कलाकार को.
1: कई बार नहीं, बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है. अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है

0: और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो मैं आपको बता रहे थे कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है। दो तीन चीजों पे खाई। एक तो ये कि मैं बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है ना वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को, मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत था इसलिए मैं कर रही थी। कारण जी ने कहा है भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ वहां की, तो मेरी नौकरी थी तो मुझे करना ही था। तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूं, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था। तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे। शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया बुरा किया वो सब बताया जाता था। तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया, आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूं। तो वो मुझे बोले क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है? सच बताऊं मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूं। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला फिर क्यों लिया? मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। बोलते तुम्हारी आंखों की वजह से, तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं, लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो, मैं थक गया हूं तुमसे, आज आठवां नौवां शो है, तुम कर क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी, क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ, यहां प्यार में डूबी हो, वहां नहीं डूबी हो, वहां चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं? जितना डांटा गया। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज को पिकअप किया और तब मैंने ये आंखें घुमाना, जो कि मेरा बुनियाद में काम आया।
1: बुनियाद धारावाहिक में काम आया। हाँ, जी जी जी।
0: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जो कैरेक्टर किया ना, अपना जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पे वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था। मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार, चोटी घुमाई थी, तो वो लगे वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
1: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहां काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता,
0: काम
1: ही
0: आता
1: है,
0: जो वो सीखता
1: है।
0: महान डायरेक्टरों हाँ। से उनके साथ काम करना इसीलिए एक अचीवमेंट है।
1: मुझे बताइए प्रभा जी कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है ना?
0: जी जी,
1: वैसे के वैसे हो जाए, समाहित हो जाए। तो आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुसी रह गई और निकल नहीं पाई?
0: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ, तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे ही वो खत्म हुआ मैं तुरंत प्रभाव हो जाती हूँ।
1: जी, जी जी।
0: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीयरेंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने
1: नहीं
0: दिया। मैं प्रभा हमेशा बनी रही।
1: बिल्कुल।
0: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं, मतलब मुझे कहते थे ये ऐसी एक्ट्रेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था, संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था। मैं वहां गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी और उसमें वो जो लेडी होती है उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है, मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये

0: बताते हो वो टूट जाती है। तो ये था,
1: हे भगवान, कहीं कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं, कब कब निकालोगे? क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम?
0: इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूं टूट के कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे। वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे? आर यू ओके? ऑफ कोर्स। तो बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं यू करती, जैसे आपने अभी देखा, मैंने अभी आपके सामने किया।
2: यही एक कलाकार की पहचान है कि वो कब कैरेक्टर में घुसता है और कब निकल आता है। तो चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: एक आशा जी का गीत सुन ले। आशा जी के गीत भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक रेयर सॉन्ग है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया।

मुंबई के पृथ्वी थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है और हर रंगकर्मी का सपना होता है कि पृथ्वी थिएटर में काम किया जाए। तो नाटक बगुला भगत में आपने राधा का किरदार

0: किया था
1: जी जी
0: विजय वर्मा शायद डायरेक्टर
1: जी जी
0: तो ये सभी एनएसडी पास आउट डायरेक्टर हैं
1: जी।
0: इनके काम करने का तरीका क्या एक आम डायरेक्टर के काम करने के तरीके से कुछ अलग होता है? आपने क्या महसूस किया?
1: हाँ, एनएसडी के लोग बहुत बारीकी में चीजों को समझते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो पूरा एक ग्रेजुएशन है ना एनएसडी में, वहां पढ़ना तो पूरा एक लेते हैं, तो वो कारंजी वाली चीजें एनएसडी के सभी लोगों में है। तो मैंने सौभाग्य से उनके साथ काम किया है, ये सारी चीजें मैंने इन्हीं लोगों से सीखी। बगला भगत वो कॉमेडी नाटक था, मैंने जो कुछ भी सीखा जहां जहां से थोड़ा थोड़ा सब जगह से सीखा, मेन तो करण जी से ही सीखा सब कुछ, लेकिन फिर भी हर एक डायरेक्टर से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा लास्ट प्ले जयरूप जीवन जी के साथ ही था, ढाई आखर प्रेम का। इसमें क्या हुआ था, तब तक मैं आवाज की दुनिया की काफी बड़ी शख्सियत बन चुकी थी, तो मैं हीरोइंस करती थी ज्यादातर, उस समय सिर्फ फिल्में चला करती थी, उस समय सीरियल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंट्रोड्यूस तो हुए थे लेकिन बहुत कम, डीडी पे ही होते थे और वो हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी डबिंग नहीं होती थी उनकी, तो मैं फिल्मों में ही कर रही थी। इनका प्ले था ढाई आखर प्रेम का, उसमें मेन रोल में कर रही थी। अब होता ये था कि हमारी जो रिहर्सल्स थी वो होती थी 6 to 8, क्योंकि वो एक स्कूल में हुआ करती थी और 8 बजे स्कूल की तरफ से ये था कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, उसके बाद अलाउड नहीं था। और मैं जो डबिंग कर रही होती थी उन दिनों या शूटिंग भी होती थी, तो उनकी शिफ्ट होती थी 9 to 6, जो कि काम खत्म होते होते तक 6:30 हो जाता था वहां से निकलते निकलते तक, और पेमेंट वगैरह लेते थे, ये सब बातें होती थी, तो तब तक वो 7 बज जाते थे उन्हीं जगहों पे, और वहां से आते आते 7:30, 8:15। तो अब वो रिहर्सल लगातार हो रही है और मैं लगातार 7:30, 7:45, यही मेरा टाइम चल रहा है, तो रिहर्सल नहीं मिल पा रही है। तो वो जयरूप जी मुझे बोले, अब एक बात और बताऊं आपको, जयरूप जी के साथ मैंने यश चोपड़ा की सीरियल डॉक्टर साहब में एक्टिंग भी की है
0: जी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, वो मेरे अपोजिट थे उसमें, हम लोग थे
0: जी।
1: तो जयरूप जी मुझसे बोले कि प्रभा जी कैसे क्या करें कि पूरा रिहर्सल का टाइम मिल जाए। मैंने कहा देखिए जयरूप जी, मैं कर सकूंगी तो जरूर करती हूँ, करूंगी, अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना गिल्ट फील करती थी डेली, यही होना, मैं आऊं और बस आधा पौन घंटा हो, एक आध सीन हो पाए, उसके बाद बाकी आर्टिस्टों का होता रहे और जयरूप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाएं कि आप अब आई हैं। अब डेली ये होते होते 1.5 महीने मैं इस प्रोसेस से गुजरी कि मैं गहरे गिल्ट में चली गई कि क्या हो रहा है मेरी वजह से। वो बोले कि ऐसे कैसे होगा, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं 4 दिन में कर लेती हूँ। बोले आप तो कर लेंगी लेकिन आपके को एक्टर कर लेंगे। इस बीच में इतना मेरे अंदर गिल्ट डेवलप हुआ 1.5 महीने में, मुझे लगे मैं कर क्या रही हूँ। अब क्या हुआ, 4-5 दिन पहले वो जयरूप जीवन बोले कि प्रभा जी अगर आप पूरा 1 दिन दे दें तो हम रिहर्सल रख लें, हॉल ले लें, कॉस्ट्यूम रिहर्सल रख लेते हैं, पूरा रन थ्रू करेंगे। मैंने कहा जी जी जी, शो के 1 दिन पहले। और क्या होता था उसमें, जो मेरा हीरो था मेरे अपोजिट, वो था सुशील पाराशर, काफी एड वगैरह में आते रहते हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे और कॉमेडी में तो उनका कमाल था। तो होता ये था कि वो, अब चूंकि रिहर्सल्स हुई नहीं थी तो एक दूसरे से मतलब वो नहीं हुए थे हम लोग मोमेंट में, इसमें उसमें, वो तो अच्छे एक्टर थे तो अपने आप कर ले जाते थे। तो वो कॉमेडी में ऐसे ऐसे मुंह बनाते, ऐसे ऐसे काम करते कि मेरी हंसी छूट जाती थी। जब मैं हंसती तो जयरूप जी ने बोला एक दिन मुझे कि प्रभा जी आप हंसिए मत, अगर शो में निकल गया तो। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाएगा, इतने सालों किया है। बोले देख लीजिए हंसिए मत, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन रिहर्सल नहीं मिली थी तो मुझे उस एक्टर के बारे में, मैं मतलब हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हुए थे एक दूसरे से, जैसे रिस्पॉन्ड करता है एक्टर एक दूसरे को, वो नहीं हुआ था। तो उस दिन भी जिस दिन फाइनल रिहर्सल थी, कॉस्ट्यूम रिहर्सल थी, उस दिन मैं मीनाक्षी शेषाद्री का एक फिल्म कर रही थी, इसमें मीनाक्षी शेषाद्री की डबिंग कर रही थी, फिल्म थी जुर्म, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे, वो मैं डब कर रही थी। और 1 दिन पहले जब मैंने काम किया तो कुछ किसी कारण से रील नहीं आ पाई, कुछ हो गया, शायद 4-5 रील रह गई उसकी, उन्होंने कहा अब ये हम कल करेंगे।

0: और रिलीज सर पे था, वो रुक नहीं सकते थे। और उनका कल कल तो पूरे दिन मेरे लिए हॉल लिया गया है। मैंने कहा मैं कल नहीं आ सकूंगी। वो बोले सोच लीजिए, 9 रील हो चुकी हैं आपकी आवाज में। तो मैंने कहा लेकिन मैं कल कैसे आ सकूंगी, क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ। बोले एक काम करते हैं, 2 बजे से रख लेते हैं, सुबह आप रिहर्सल कर लीजिएगा, 2 बजे से रख लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे टाल नहीं सकते। और मैं उस जमाने में उस फिल्म में 25,000 रुपए ले रही थी
1: उस समय।
0: तो 25,000 रुपए उस वक्त जब मतलब लोगों की सैलरी 2,000 होती थी महीने में। और वो उन्होंने कहा, महेश भट्ट के एसोसिएट डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने मुझे कहा, वो उस दिन समझा रहे थे वो मुझे बैठ के, बोले आप एक्टिंग क्यों करती हैं, आप थिएटर क्यों कर रही हैं, आप तो टॉप डायरेक्टर के साथ कर चुकी, आपको सारे एक्सपीरियंस मिल गए, आप क्यों कर रही हैं थिएटर। मैंने बोला मुझे खुशी होती है। बोले और ये डबिंग इसमें क्या होता है। मैंने कहा ये भी खुशी होती है। तो बोले कौन सी बड़ी खुशी है, ये या वो। मैंने कहा खुशी तो एक बराबर है, लेकिन बोले क्या नहीं करके आप कंफर्टेबल होंगी। मैंने कहा थिएटर, क्योंकि इससे मेरा खर्चा चलता है। तो बोले तो आप सोच लीजिए आप किस चीज के लिए किसको छोड़ रही हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले कल आप 2 बजे आ सकती हैं तो आ जाइए, वरना टाटा बाय बाय। मैंने कहा ओके। अब हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जयरूप जीवन को बोलूं कि मैं कल भी नहीं आऊंगी। मैंने उनको बोला कि कल हम 9 बजे से रखते हैं और हम कम से कम 4 रन थ्रू हम कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। उन्होंने मेरे लिए थिएटर लिया। अब हुआ ये कि किसी को नहीं पता था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कह दूं कि मैं 2 बजे जाऊंगी। मैंने बोला सुबह 9 बजे सब लोग आ जाए और 9 बजे से रिहर्सल करते होंगे। ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच गई, लेकिन बाकी कोई नहीं पहुंचा। जयरूप जीवन भी 10 बजे पहुंचे, 10:30। उनको लगा 9 बोल रही है, कहां 9 बजे तक आ पाएंगी। और मैं इस वजह से ज्यादा वो थी कॉन्शियस कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। हम वहां पहुंचे, देखा कोई नहीं आया आर्टिस्ट। अब जयरूप जीवन बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, आर्टिस्ट आने शुरू हुए, 10 बजे से शुरू हुए, क्योंकि ये इमेच्योर थिएटर था, पेमेंट तो मिलता नहीं था किसी को। करते करते वो शुरू हुआ 11:30 बजे, 1 रन थ्रू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 2 बज गए। अब 2 बज गए, वहां थिएटर ले चुके हैं वो लोग पे कर रहे हैं एक एक मिनट का
1: जी।
0: और वहां मेरा वेट हो रहा है। 2:45 बजे से मैं कॉन्शियस होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही, डायलॉग भूल रही। 2 बज गए, अब मैं सोचू बोलू कि नहीं बोलू, बोलूंगी। अरे 1 रन थ्रू हुआ बार बस। जब तक मैं कुछ बोलू कुछ करूं, जयरूप जीवन मेरे पास आए, बोलने लगे प्रभा जी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। 2:15 बजे बोलते क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरी डबिंग है। बोले आज भी। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ कल काम रह गया था उनका, तो मुझे आज भी बुलाना है। मैंने कहा आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगी। 25,000 रुपए हैं, महेश भट्ट का काम है,
1: सही बात,
0: इतने बड़े उस पर मेरा नाम हो जाएगा खराब, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगी और आप कहें तो करूं। सर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ये काम मत करो, कर लो। मैंने कहा और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं बहुत गिल्ट में जी रही हूँ 2 महीने से, अब मैं थिएटर नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जब शो हुआ तो शो में वही हुआ कि मेरी हंसी छूट गई,
1: जो नहीं होनी थी,
0: जो नहीं होना,
1: उन्हें डर था,
0: जिसका उन्हें डर था। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था एक्टर सुशील। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करेक्शन करने की कोशिश कर, वो जितना संभालते मैं उतना हंसती। क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि मैं नाराज हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ और मायके जा रही हूँ, तो बोलते हैं झगड़ा जा रही मायके जा रही हूँ, बड़ी तुम्हारी तमीज है मायके जाने की, ऐसा कुछ वो उनका था। मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूटी तो वो बोलते हैं अरे हंस रही है, देखो वो ऑडियंस को बोल रहे देखो कैसी पागल लड़की है, मैं इस पर नाराज हो रहा हूँ और ये हंस रही है। और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के बोले कि मेरी और ज्यादा हंसी। इतनी हंसी छूटी कि मेरे साड़ी का पल्लू था, मैंने पूरा पल्लू अपना मुंह में घुसा लिया, फिर भी मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। और उसमें VM व्यास भी थे, वो मेरे ससुर बने हुए थे और वो मेरा पति बना था। उस दिन जो स्टेज पे मेरी हालत हुई ना, वो मैंने कहा बाप रे, मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं थिएटर कर सकूँ, क्योंकि रिहर्सल्स मैं दे नहीं सकती हूँ पूरी, क्योंकि थिएटर एक ऐसी

0: ऐसी चीज है ना कि आप हर बार एक पूरी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। एक बार हरिवदन में ये हुआ था कि हम लोग शो कर रहे थे और उसमें देवदत्त को जो मेन रोल था, आलोक चटर्जी, कितना बड़ा नाम है वो, आलोक चटर्जी ने किया था वो, आलोक चटर्जी को लूज मोशन लग गए।
1: अच्छा
0: हाँ, अब बताइए क्या करें। अब वो बेचारा एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से पूरा ये रिहर्सल, मुझे भी पता नहीं चला, बस मुझे लगे वो गायब हो रहा है, थोड़ा देर में एंट्री हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सबने बताया कि उसको डिसेंट्री हो गई थी, उल्टी हो रही थी,
1: बताइए,
0: लूज मोशन हो रहे थे, उसमें वो आ रहा था,
1: बिल्कुल
0: उसमें कर रहा था।
1: उसमें भी अगर कलाकार संभालता है तो उसकी महानता है।
0: आप सोचिए, सोचिए कितना
1: हर परिस्थिति में नाटक को एंड करना चाहता है कि नाटक एंड हो जाए,
0: शो मस्ट गो ऑन।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, हमारा भी शो चल रहा है और बताइए कौन से गीत आपको सुनवाएं। अब
0: गीत आप सुना दीजिए, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, सीरियल की दुनिया अब चलते हैं हम, जहां आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और एक मुकाम बनाया है अपना। तो थिएटर की दुनिया से निकलकर जब आप टीवी की दुनिया में आई तो वो शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वो जमाना था दूरदर्शन का।
1: जी हाँ जी।
0: तो बुनियाद सीरियल में आपने जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी के साथ काम किया है, उनके निर्देशन में, और बहुत ही क्लासिक विभाजन गाथा थी ये बुनियाद जो है।
1: जी जी।
0: आपको मतलब किस तरह से चयनित किया गया, क्या ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के जरिए चुना गया, या
1: मैं आपको बताऊं, ये जो ऑडिशन वाला चक्कर है ना, ये बाद में शुरू हुआ है।
0: अच्छा, पहले नहीं होता
1: था। तब नहीं होता था, तब तो डायरेक्टर सीधे देख के और वो अपना जजमेंट होता था उनका। इसके लिए हुआ ये था

0: कि मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसका नाम था ढहती बुनियादें। तो ढहती बुनियादें मैंने आशा शर्मा, जो बुनियाद में चायजी का रोल कर रही थी, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरी फिल्म आएगी, आप देखिएगा। उन्होंने देखा, उनको लगा लड़की तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो वहां एक कैरेक्टर निकला बुनियाद में, तो उन्होंने रमेश जी को बोला कि एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है, थिएटर की है, नई लड़की है, आप देख लीजिए। तो आशा जी ने मुझे वहां रिकमेंड किया, रमेश जी ने मुझे बुला लिया जहां शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, बैकग्राउंड पूछा, थिएटर बैकग्राउंड था मेरा पूरा, फिर वो फिल्म थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने बस देखा और मुझे वो स्क्रिप्ट वही थी ही, उन्होंने कहा ये जरा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया, बस उन्होंने मुझे ले लिया
1: जी। तो आपका इसमें रोल क्या था, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
0: हाँ जी, मेरा रोल था फूलमती, एक नेगेटिव कैरेक्टर था।
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं यश चोपड़ा साहब, उनका एक धारावाहिक आया था डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी, तो इसके निर्देशक परीक्षित साहनी थे
0: जी।
1: तो प्रभा जी, दूरदर्शन के लिए एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक आया था अधिकार,
0: हाँ जी,
1: तो जानू बरुआ साहब इसमें
0: डायरेक्टर
1: थे, तो इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको?
0: ये तो बस ऐसी सौभाग्य समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो गई थी उनसे प्रोड्यूसर से मिलने, वो मंजू सिंह थी ना,
1: मंजू सिंह थी,
0: तो मंजू सिंह जी से मिली। मुझे नहीं पता था कि इस एपिसोड को वो डायरेक्ट करने वाले हैं बरुआ जी, ये तो मुझे वहां जाके पता चला सेट पे कि वो जानू बरुआ जी। मैं तो जानू बरुआ जी को जानती भी नहीं थी तब तक, उतना वो नहीं था। तो उनके साथ मैंने एक चीज देखी, ये मैंने उनसे सीखा कि हम लोगों का उसमें जो रोल था वो था एक मजदूरों की लीडर का। तो उसमें क्या है, फिश का, कोल्ड स्टोरेज का, कि वहां पे वो फिश में वहां काम करती हैं, कोल्ड स्टोरेज में लेडीज, तो उनका जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, वो होता है। तो मैं भी वही थी, और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अब उसमें तो मछलियां ही मछलियां, क्योंकि वही था, मेरी हालत खराब, तो वो थी उसको साफ करने वाली, वो मजदूर हैं, तो वो टोकरे भर भर के और चारों तरफ सफेद सफेद मछलियां ही मछलियां। अब मुझे आ रही थी घिन बहुत भयंकर, क्योंकि मैं तो कभी छुआ ही नहीं मैंने। अब मुझे उन्होंने कहा चलो करना है तो करना है। अब जब मैंने किया तो मैं ऐसे घिना घिना के छील रही उसको, ये तो मतलब मैं इस तरह से करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड लेडी, बहुत धीरे धीरे नाखून से उठाए, उंगलियों से उठाए, धीमे से रखे, लेकिन आप मजदूर हैं, आपका डेली का काम है वो है। तो आपका तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इतनी नजाकत से उठाएंगी, इतनी नजाकत से रखेंगी।
1: रखेंगी, सही है।
0: वो जब मैंने ऐसे किया तो जानू बरुआ मुझसे बोले कि आपने कभी मछली नहीं छुई है क्या? मैंने कहा नहीं छुई। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बोले यहाँ मछली साफ करने वाली मजदूर है ये, उसका जीवन मछलियों में है, वो दिखना चाहिए आपसे। मैं कहा आप क्या करूं? मैं कहा वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बोले इतनी टोकरी रखी थी, इतनी मछलियां आपको साफ करनी है, और उन्होंने रियल मजदूर लेके आए, वहां थे रियल मजदूर जो शूटिंग पे नहीं थे, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए इनसे सीखिए। मैंने उनसे सीखा, जब तक उस परफेक्शन से मैंने मछली छीली नहीं तब तक शूटिंग रुकी रही।
1: बहुत बड़ी बात।
0: और नाक मतलब मुझे ऐसे लगे मैं मर जाऊंगी उस बदबू से, तो मैंने कहा मैं नाक चढ़ रही, बोलने लगे आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीवन है वो, आप उन्हीं में रहती हैं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा, क्या आप फैमिलियर हैं इनसे?
1: बिल्कुल,
0: ये थे जानू बरुआ। उन्होंने कहा आप ऐसा लगना चाहिए, आपके जीवन है, क्या करती फिर मैं टोकरी ले वाले का कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम ये करोगे उतना होगा। तो मैं टोकरी लेके खूब अच्छे से, वो खुद छिल छिल के दिखा रहे कि इसको ऐसे छिलो, उसकी मुंडी ऐसे तोड़ो, मैं ऐसे धागा निकालो,
1: क्या
0: इतने फास्ट चलना चाहिए हाथ,
1: क्या बात।
0: तो ये मैंने,
1: वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए,
0: प्रैक्टिस दिखनी चाहिए, मतलब आप रियल लगना चाहिए, यही बात है मंदाकिनी जी, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मैं चूंकि एपिसोडिक ज्यादा किए मैंने, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिल पाया। आप सोचिए कि एक तरफ रमेश सिप्पी, दूसरी तरफ गुलजार, तीसरी तरफ श्याम बेनेगल, जानू बरुआ,
1: बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर,
0: थिएटर में भी

0: और फिल्म्स में
1: टॉप ग्रेड के कलाकार,
0: टॉप ग्रेड के, और आवाज में भी, डबिंग में भी फिर यही लोग थे।
1: तो चलिए आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं।
0: हाँ जरूर, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए।

0: डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1988 में धारावाहिक आया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पर था, भारत एक खोज। तो इसके निर्देशक भी महान थे, श्याम बेनेगल साहब।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और इस धारावाहिक में आपका जो किरदार था वो प्रेमवदा का था।
1: प्रेमवदा,
0: किस तरह से आपने प्रेमवदा का ये कैरेक्टर जिया?
1: बस वही जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जीना होता है उसको समझ के, उसके जीवन को फील करके। तो उनके साथ वो भी अगेन उतनी ही बारीकी से काम करने वाले थे कि वो मेन कैरेक्टर्स पे ही नहीं बैकग्राउंड पे भी वो उतना ही काम करते हैं। श्याम जी,
0: जी जी,
1: पर्दे को रियलिटी में कैसे आप जिए ये वो श्याम बाबू
0: सिखाते थे। आपने बहुत सारे धारावाहिक में प्रभा जी काम किया है, अगर हम यहाँ जिक्र करने बैठे तो शायद जो समय है वो पूरा हो जाएगा। ब्योमकेश बख्शी थे, उसमें आपने काम किया है। कई टेलीफिल्म्स में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने शिव महापुराण की बात करें या आप बीती, कमांडर, सांच को आज, ऐसे बहुत सारे धारावाहिकों में आपने काम किया है, तारा है या एयर होस्टेस है। तो उस समय जो कहानी में गहराई होती थी, एक सामाजिक संदेश था, आज थोड़ा सा कम होता है, एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं।
1: हाँ, वो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि आजकल कमर्शियल ही रह गया है प्रोग्राम बनाना। आजकल मतलब वो गहराई को छूना उनका उद्देश्य भी नहीं रह गया है। तो पहले जो होता था वो लोगों के दिलों में उतरना होता था।
0: जी,
1: अभी क्या है कि खींचना है उनको ज्यादा से ज्यादा।

0: आपने फिल्म अकेला में,
1: और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला, उसमें वो रोल था नर्स का जिसको वो फ्लर्ट करते हैं, तो फिल्म की लंबाई बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वो रोल पूरा काट दिया गया मेरा।
0: तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर को आपने अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि स्मिता पाटिल हैं, मीनाक्षी शेषाद्री हैं, किमी काटकर हैं, रमैया, मुनमुन सेन और बहुत सारी अभिनेत्रियों के अलावा आपने जैसे जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपकी अपनी आवाज है।
1: 007 जेम्स बॉन्ड गोल्डन आए नाम था उस फिल्म का,
0: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज।
1: जी मेरी आवाज है
0: जी।
1: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म में अपनी आवाज दी है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी।
1: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है? एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
0: तो स्मिता पाटिल के लिए आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
1: स्मिता जी की डेथ हो गई थी तो कुछ फिल्में थी जो तैयार थी और स्मिता जी नहीं रही, तो उनकी आवाज को मैच करती हुई कोई आवाज चाहिए थी, तो ये मेरी थी पेट पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज है या स्मिता पाटिल की है।
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
1: देखिए, मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज की हर विधा।
0: अच्छा।
1: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, पीबीसी है, इसकी वॉइस ओवर है, विज्ञापन है, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से कम।
0: जी।
1: तो सिर्फ आवाज कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर रही हूँ।
0: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
1: ऐसे एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, बनाते हैं, सब आर्टिफिशियल आवाजें बनानी थी, जैसे कि क्या कहाँ से आ रहा है तो, अरे क्या बताओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं नहीं आ सकता, समझो करो। कैसे छोड़ दूंगा।
0: हाँ, बात को
1: ऐसे आवाज।
0: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: तुझे जीवन की डोर से बांध
0: दिया।

0: प्रभा जी, आज आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने अपनी अभिनय यात्रा हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

0: के जरिए शिरकत करते हुए कई अहम तजावीज़ पेश कें। रघुराम राजन ने कहा कि महारतों की तरक्की के जरिए ही रोज़गार के मौके बेहतर बनाए जा सकते हैं और स्टार्टअप्स को फ़रोग देने से सनअती तरक्की हासिल की जा सकती है। वज़ीर आला ने बताया कि तालीमी निसाब में AI के इस्तेमाल पर एक आला सतही कमेटी कायम की जा रही है और इस सिलसिले में राजन से मुनासिब मशवरे देने की दरख्वास्त की। राजन ने मशवरा दिया कि तमिलनाडु के तर्ज पर सनअती पॉलिसी अपनाने से सरमायाकारी को रागिब किया जा सकता है और डेटा सेंटर्स के इंतज़ाम में बिजली और पानी के इस्तेमाल पर ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने वजाहत की कि हुकूमत स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए कोशां है। रायतू कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और अरकान ने जुबली हिल्स पर वाकई वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फसलों की तब्दीली पर खतियत दी गई एक रिपोर्ट को पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर वाकटी श्रीहरि भी मौजूद थे। फसलों की तब्दीली की पॉलिसी पर हुकूमत जाम तबादले ख्याल करने का इरादा रखती है। इस मसले पर असम्बली में खसूसी मुबाहस करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। इस मामले में मजीद जायजा लेते हुए किसानों को फ़ायदा पहुँचाने वाले तजावीज़ के साथ आने कमीशन के अहकाम को वज़ीर आला ने हिदायत दी। रियासती काबिना की दिल्ली कमेटी ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मकई के साथ साथ जवार को भी मार्क फेट के जरिए खरीदने का फैसला किया है। सेक्रेटेट में मुनाक़दा जायजा अजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव और उत्तम कुमार रेड्डी समेत दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर नागेश्वर राव ने कहा कि अगरचे मरकज़ की जानिब से ताउन हासिल नहीं हो रहा है, इसके बावजूद रियासती हुकूमत अपने ही फंड से यह खरीदारी करेगी। उन्होंने बताया कि अब तक 5,50,000 टन मकई की खरीदारी की जा चुकी है और जवार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने मंथनी में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का पिद्दापल्ली के रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने बात करते हुए कहा कि नौजवानों में स्किल्स डेवलपमेंट के जरिए ही तेलंगाना $3 ट्रिलियन माशी निज़ाम की तरक्की मुमकिन है।
1: ఆడియో విజువల్ గేమింగ్ సంబంధించిన సంస్థ ఈ సంస్థ ద్వారా ఇక్కడ శిక్షణ పొందితే అదే విధమైన ప్రతిభను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామని ఆ సంస్థకు సంబంధించిన చాలా మంది వచ్చారు. AIకి సంబంధించి జెన్ AIకి సంబంధించిన సంస్థ వారు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈరోజు అందరూ వారి సంస్థకు సంబంధించి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఒక కేంద్రంగా నిలబడాలని టాక్స్ సంస్థ వారు వచ్చారు.
0: हुकूमत के ननियन रोज़ा अवामी हुक्मरानी और तरक्की के मंसूबे के तहत मुल्क ज़िले के एटूरू नागराम मंडल कुंडाई चिन्ना बोयनापल्ली के देहातों में मुनाक़द किए गए प्रजा दरबार में रियासती वजीर सीतक्का ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 11 मुस्तहिक़ खानदानों में कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए। बाद अज़ां चिन्ना बोयनापल्ली गाँव में 1,46,00,000 रुपयों की लागत से तामीर किए गए 11 KV बरकी सब स्टेशन के ज़िली मरकज़ का इफ्तिताह किया। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ज़िराअत को आला तरजीह देते हुए किसानों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम कर रही है। उन्होंने अवामी हुक्मरानी तरक्की के मनसूबे के ननियन रोज़ा एक्शन प्लान के तहत आज हुस्नाबाद के ज़रिए मार्केट में मुनक़दा किसान हफ्ता तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस बार मकई और धान की पैदावार ज़्यादा हुई है और किसानों को किसी दुश्वारी का सामना ना हो, इसके लिए गाँव में तेज़ी से खरीदारी जारी है। रियासती वजीर अटलूरी लक्ष्मण कुमार ने जगतियाल ज़िले में कल रात होने वाली गैर मौसमी बारिश से भीगे हुए धान और मकई का जायज़ा लिया। उन्होंने धर्मापुरी मार्केट यार्ड का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने किसानों से बात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और मार्केट यार्ड में मौजूद धान और मकई की फसल को अंदरून 1 हफ्ता 10 दिनों के अंदर खरीदारी के अमल को मुकम्मल करने का किसानों को तयक्कुन दिया। अवामी हुक्मरानी तरक्की के मंसूबे के तहत ननियन रोज़ा एक्शन प्रोग्राम के सिलसिले में ज़िला संगारेड्डी के महकमे बराए ख़वातीन अतफाल माजूरीन और बुज़ुर्गों की बहबूद के ज़ेर एहतमाम नारायणखेड़ में एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने शिरकत की। गवर्नमेंट वीप अदी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत किसानों की जानिब से पैदा किए गए हर दाने को खरीदेगी। रईस मिलर्स को कवायद पर अमल करने पर जोर दिया। अदी श्रीनिवास ने राजन्ना सिरसिला ज़िले के विमुलवाड़ा असम्बली हल्के में वाक़ मुख्तलिफ रईस मिलों का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बात भी की।
2: ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఉన్నటువంటి వరి ధాన్యాన్ని చివరి గింజ వరకు కొనేటువంటి క్రమంలో కొనుగోలను వేగవంతం చేయాలని చెప్పిన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలలో

कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नाटी मेटी सिने गीत मालिका मधुरिमा अजरामरम अनिपिंचे गीतालू

0: भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदाम का ऐलान किया है। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकलो हमल की खातिर एक माहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, तिब्बी साजो सामान, पब्लिक सेक्टर ऑडिट, डिजिटल अदायगी निजाम और सकाफत और सियाहत के शोबों में मुख्तलिफ मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम के दरमियान बातचीत के बाद इन माहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात के अलावा बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तोलाम का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम के कदीमी चंपा तहजीब के माइसन और नेहान ताओ मंदिरों का अहिया कर रहा है।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निमटने के खातिर भारतीय अवाम के साथ यकजहती का इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तोलाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकतदारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नताइज को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफेन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के अजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरक़ी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहां जरई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तेफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफेन ने 2027 से वियतनाम की अवामी सेहत देखभाल के खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कान से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाती राबतों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात, तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी रजामंदी जाहिर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा जनरल फैन वैंग जियांग के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत सूरत हाल की अक्कासी होती है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मुंतजर हैं। मगरी बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। बीजेपी के रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य ने नामानिगारों को बताया कि यह तकरीब सुबह 10 बजे शुरू होगी। पार्टी जराये के मुताबिक इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के मुख्तलिफ बुजराए आला की शिरकत का इम्कान है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मकाम का इंतखाब अलामती है क्योंकि यह जगह

0: बंगाल में अहम सियासी रैलियों और बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा का गहवारा रही है। इस तकरीब में मुल्क के आला रहनुमाओं की मौजूदगी से यह जाहिर होता है कि बीजेपी इकतदार की मुंतकली को इंतहाई अहमियत दे रही है। टीवी के सरबराह सी जोसेफ ने तमिलनाडु में सरकार तश्कील करने का दावा पेश किया और रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। टीवी के ने दीगर पार्टियों से भी राबता किया क्योंकि उन्हें रियासत में सरकार की तश्कील के लिए मजीद हिमायत की जरूरत है। कांग्रेस ने अपने 5 एमएलएज होने के नाते टीवीके की हिमायत का फैसला किया है। उसने आज नामजद वजीर आला विजय से मुलाकात की और उन्हें अपनी हिमायत का मकतूब पेश किया। कांग्रेस ने अपनी देरीना इत्तेहादी पार्टी डीएमके साथ छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज रियासत में सियासी गहमागहमी का दिन था। मुख्तलिफ सियासी हलकों से तस्दीक और नई हुकूमत की तश्कील के तई पहले कदम का इंतजार जारी था। वाहिद सबसे ज्यादा अक्सरियत वाली पार्टी तमिलागा वैतरी कड़गम टीवीके ने 108 असेंबली सीटें हासिल की हैं और उसने कांग्रेस की 5 सीटों की हिमायत भी हासिल की है। टीवीके ने यूसीके और बाएं बहास की पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम को हिमायत की दावत दी है। AIADMK ने भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीसामी की क़ियादत में आज शाम एक मीटिंग की। टीवी के सरबराह को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टियों की जानिब से हिमायत का मकतूब पेश करना होगा। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: हुकूमत ने मुत्तला किया है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की दस्तयाबी मामूल के मुताबिक है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर इसके खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मुत्तला किया कि मगरबी एशिया बहरान के दरमियान हुकूमत खाना पकाने के लिए एलपीजी के घरेलू सारिफिन को 100% और कमर्शियल सिलेंडर के सारिफिन को 70% तक फराहमी की खातिर सभी इकदाम कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 5 किलोग्राम के तकरीबन 1,20,000 FTL सिलेंडर फरोख्त किए गए। उसने मजीद कहा है कि एलपीजी की जखीरांदोजी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कल इस सिलसिले में 2,100 से ज्यादा छापे मारे गए।
3: जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल के सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
0: बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि खित्ते में सभी भारतीय मल्लाह खैर वाफियत से हैं और गुज़िश्ता 48 घंटे में किसी भारतीय परजंबरदार जहाज के सिलसिले में किसी वाकई की कोई खबर नहीं मिली है। जनाब शर्मा ने मुत्तला किया कि जहाजरानी के डायरेक्टोरेट में कायम करदा कंट्रोल सेंटर्स ने अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से ज्यादा ईमेल मौसूल किए हैं। वजारत खारजा में भी एक मुतालिका खसूसी कंट्रोल रूम काम कर रहा है जो भारतीय शहरियों और उनके कुनबों के सवालात का जवाब दे रहा है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि परवाजों के सिलसिले में मजमू सूरत हाल बेहतर हो रही है और खित्ते से भारत के मुख्तलिफ मकामात के लिए इजाफी परवाजें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने जमीनी रास्तों से 2,520 भारतीय शहरियों के ईरान से निकलने में मदद फराहम की है। सालिसों के मुताबिक अमरीका और ईरान एक इब्तदाई माहदे के करीब हैं जो खलीज में जारी तनाजे के खात्मे का सबब बन सकता है। मुजाकरात से वाकिफ जराए के मुताबिक फरीकैन एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमतनामे पर काम कर रहे हैं। मुजवजा माहदे में ईरान की जानिब से न्यूक्लियर अफजूदगी को रोकने पर इत्तफाक करना शामिल है जबकि अमरीका को पाबंदियों में नरमी करनी होगी। मुजवजा माहदे में मुंजमद ईरानी फंड्स में से अरबों डॉलर जारी करना भी शामिल है। तवक्को है कि दोनों फरीक आबनाए हुरमुस के जरिए नकलो हमल पर पाबंदियों में भी नरमी करेंगे। हुकाम के मुताबिक इसके बाद वसीतर माहिदे को हतमी शक्ल देने के

0: ये 30 दिन पर मुश्तमिल मुजाकरात का एक दौर होगा, जिसके दौरान बहरी पाबंदियों और इलाके में अमरीकी बहरी फौज की मौजूदगी को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रोजेक्ट फ्रीडम में तवक्फ किए जाने के ऐलान के बाद रवैये में ये तब्दीली रोनुमा हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान इस वक्त अमरीका के 14 नुकाती तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीका को तवक्को है कि अगले 48 घंटे में कई कलीदी नुकात पर ईरान की जानिब से जवाब मौसूल होगा। इस मुफाहमत नामे पर अमरीकी एलचियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और कई ईरानी हुकाम के दरमियान सालिसों के जरिए बातचीत की जा रही है। ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब ने इशारा दिया है कि खतरात कम होने के बाद आबनाए हुरमुस को महफूज आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोला जा सकता है। मुमकिन समझौते के तनाजुर में मार्केट में तेजी आ गई है। ऐसा इस उम्मीद के पेश नजर हुआ है कि तवानाई की फराहमी को मुतासर करने वाली जंग शायद अपने अख्तितम पर है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत के मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में लागत में इजाफे के बावजूद साल 2025-26 की सहमाही में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्स और सनत की भारतीय फेडरेशन फिक्की के जरिए मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक एक सर्वे में 93% शुरका की राय में यकसां या ज्यादा पैदावार हुई, जो गुज़िश्ता सहमाही में 91% थी। झारखंड के लातेहार जिले में शोरिश पसंदी की रोकथाम की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम झारखंड जनमुक्ति परिषद के 2 कारिंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट कुमार गौरव ने कहा कि जंगलाती इलाके कुरुमखेटा में इंतहा पसंदों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात मिली थी। खबर मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इलाके की नाकाबंदी की और 2 इंतहा पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। जाय वाकये से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने एक मखसूस टास्क फोर्स साइबर सुरक्षा तश्कील दी है, जो मस्नूई जहानत एआई में हुई तेज रफ्तार तरक्की से पैदा होने वाले साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक खतरात का जायजा लेगी, जिनमें खामियों की निशानदेही करने वाले एआई टूल्स शामिल हैं। सेबी के मुताबिक ये तकनीकें हालांकि बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनकी तेजी से शिनाख्त करने और निजाम की खामियों का फायदा उठाने की सलाहियत के सबब खतरात में नुमायां तौर पर इजाफा हो सकता है। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर साइबर जराइम से मुतालिक सरगर्मियों के लिए भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर जुनूब मशरकी एशिया ले जाने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में मुंबई, दिल्ली और लखनऊ समेत मुख्तलिफ शहरों के 9 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी गई। एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी लेनदेन समेत कई माली राब्तों का पता लगाया है और अहम इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद जब्त कर लिए हैं। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम के कुछ इलाकों माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। भारत के नौजवान मुक्केबाजों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में 27 तमगे जीते हैं। आज अंडर 15 की लड़कियों की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 15 में से 14 तमगे हासिल किए, जबकि अंडर 15 लड़कों की टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और 15 में से 13 तमगे जीते। आईपीएल क्रिकेट में आज राजीव गांधी बैन अल्क्वामी स्टेडियम में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान जारी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए हैं और जीत के लिए 236 रन का निशाना रखा है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकलो हमल के खातिर एक माहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह है विविध भारती। आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जो

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और ये भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी सो अनुष्का बन गई।

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित भी किया गया।

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहां ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था। फिल्म

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम।

0: पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।
1: काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, बिंदु की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने NH10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।